0: अरे
1: ये बांग को ना पाव बांग जी ना
0: लकी बाने ले बमया ना पावांग पनेंग को री बसाय तागुरा रे गाता मुनाय मटोंग पी लगु हिंदिया अचे याद देना पाव पावांग जी चिकनी ले